स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। सब साथे मळीने आपणे हाथ जोड़ी स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोक गान करीए।

जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। रोजनी जेम आपणे सौ स्वामी श्रीनी स्मृति साथे हाथ जोड़ीने श्लोक गानो करशुं।

अविअक्षरधामतीयवनिमाऐश्वर्यमुक्तोलयी शोभेऽक्षरसाथसुन्दरछवि लावण्यतेजोमयी कर्तादिव्यसदारहे प्रगटजे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालुने नित्य नमो सर्वावतारी हरि। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। स्वामीनारायण भगवान ना अत्यंत लाडीला कृपापात्र